खिन में थाप निवाजे ठाकुर नीच कीट से करे राजंगा नीच कीट से करे राजंगा कबहू न।

कौन करे, पद भविष्य लिए कर अपने सगल कर्त नमस्कारो, सगल कर्त नमस्कारो बन जा।

सत्संग जी हो गुरु रामदास पातशाह कल्याण मोहल्ला चौथा प्रभु की जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे और ये जो है राग आप श्रवण कर रहे हो ये हमीर कल्याण है। गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज और जो ये रीत है बड़ी पुरातन रीत है पांच साल दी बराबर दी सवारी है और आज छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हैं मैं कह जरा इन्होंने भी हैरान करिए आज तो गुर दे दे के क्योंकि इस तरह ही बच्चे सीखते हैं उत्साह बढ़ता है गुण गाण नाल ही रब नाल प्यार बनता है जो

हो कदम सुहावने हन, जो कदम सतसंगत वाले जाते हैं, जो कदम परोपकार ले किसी की सेवा ले किसी के भले ले उठ

मनुख अपने घर दे सामान इकट्ठे कर रहा है। जे कोई इस नूं जपन दा चेता कराउंदा है तां कहिंदा है जी बिरद अवस्था विच जप लवांगा। हजूर कहिंदे हन उस वेले तेरे कोल कुछ नहीं हो सकना, इस लई जे जपना है तां फिर हुणे ही जपना। चरण शीश कर कंपन लागे, नैणी नीर असार बहे, जे भा बचन शुद्ध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करे। इस लई जे जपना है

श्लोक ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेठिया नानक मन परगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु जीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्कट माहे अनेक रंग नाना दिष्टा है नौ निध अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनंत तहनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत काट घर व्याप रहा भगवंत तरन माहे आकाश प्याल सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी वै संतर माहे चार कुंट दै दिसे समाहे तिसे पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मैं देख ससीर सूर नखत्तर मैं एक वाणी प्रभु की सबको बोले आप अडोल न कबू डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाये गुणे अमोल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत तार रहे हो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नास नानक तिन मैं इहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुनो शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एहत सत वचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभु जाने अंतर वसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभु ते सगली उत्पत तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एक अंकार अनक कला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व पूत आप वरतारा सर्व नैन आप पेखनहारा सगल समग्री जाता तना आपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद अल्प तो रहे जो किछ कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे तले समाए इसते हुए सो नाही बुरा ओरे कहो किने कछ करा आप भला कर तू तदनी की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत कोत आपन संग राच ताकि गतमित कहीं न जाए दूसर हुए तो सो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक एहु जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभु सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जने आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का यह सुहाओ जन के संग चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक।

मेरे सतगुरु निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे तुहाडे चरणा कमलां तो एक पल वास्ते भी ओझल ना होवां ओले ना होवां भुल ना जावां तुहानू नानक मांगे दान प्यारे मैं तां इही दान मंगदा निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे। बंदा एक चादर दी बुकल मारी तुरिया जा रहा सी सिखा ने वेख्या कहन लगे महाराज कोई सूईया जापदा है कोई खुफिया जापदा है जासूस लगदा है जेड़ा किले दे नेरियों लंघिया जांदा है मुंह सिर छुपा के तुरिया जांदा है। बुकल कैसी मारी सू पुछे बंदा तू ऐसे बड़ी ठंड वापरन डई किवें बुकल मारी सू जरूर एदे कोल कोई गुजे हथियार होने ने और सू लैण वास्ते तवे अपने आप नू छुपा के ये अपने नेड़े तेड़े फिरदा है। महाराज कहन लगे फड़ लो सिखा ने जाके घेर लिया फड़ लिया रोंदा धोंदा कुरलाउंदा बाहां छुड़ाउंदा तरले मारदा गुरु के हाजिर किया गया। साहब कलगीधर पातशाह कहन लगे कौन है तू मुंह नंगा करके कहन लगा पातशाह तुहाडी शोभा महिमा सुनी मैनू गरीब नू कोई नहीं जानदा मगर गरीब नवाज तुहानू सारे जानदे ने मैं भी जानदा जो कोई तुहाडे बारे सुने है मैं बेनती करांगा मैनू खिमा कर दियो कौन है तू कहन लगा जी पठान पुत्र किवें आया सा इधर के महाराज एवें बिपता दा मारिया आ गया। सिख कहन लगे महाराज आ चादर खुलाओ इहदी पुछो इहदी बुकल विच की है अखां नीवियां करके कहन लगा सच्चे पातशाह मैं बेनती करांगा मेरा परदा रहण दिओ हर कोई चाहुंदा मेरा परदा बनिया रहे जो कुछ मैं अंदरों हां जो कुछ मेरे अंदर है ढकिया रहे क्योंकि हर किसी बंदे कोल नंगा करन जोगा चंगा चंगा कुछ नहीं है जिन्हां कोल चंगा चंगा है वह परदा करन भी किस गल दा बल्कि वह तो इश्तिहारबाजियां कराउंदे ने किसे बड़े चंगे हैं जिन्हां कोल थोड़ा बहुत भी चंगा है बल्कि इथों तक जे को एक करे चंगियाई मन चित बहुत बफावे छोटी मोटी नेकी हो जावे ना संसार नूं दसना चाहुंदा है लेकिन बदियां ते परदा पाई रखना चाहुंदा है कोई किसे नूं नहीं दसदा सजना तो गहरे सजना नूं इथों तक पति पत्नी एक दूजे नूं अपनियां कमजोरियां तक नहीं दसदे कोई विरले हुंदे ने जिहड़े अंदरों बाहरों हुंदे ही शुद्ध ने परदे वाली गल ही कोई नहीं। तरला मारन लगा कहन लगा साहिब जी मेरा परदा रहण दे साहिब मुस्कुरा पए साहिब जानदे ने दा परदा की है पर ये तो आप परदे ढकण वाले ने केड़ा ए परदा ला कि उहदा दोई जानी परदा कजन ते आए ने कहंदे ने नहीं लाओ इहदा खेस इहदी चादर ला दे रोण लग पिया सिखा ने एक नहीं सुनी उन्होंने चादर ला दिती ओदी बगल च निक्का जिहा मरीज जिहा कुत्ता पाया है ओदी संगी ते उन्हें हथ दिता होया कुत्ते दी अखां बाहर ने जवान बाहर नूं आई मर रहा है छड़ दिता कुत्ता थले डिग पिया। साहब कहन लगे कि यही तेरा परदा सी सिर नीवा करके खलोता है। साहब कहन लगे क्यों की गल है बोलदा क्यों नहीं कहन लगा महाराज कई दिनों का भुखा सा देशों प्रदेश आ गया सा किरत करने वास्ते इथे बादशाहत ने ऐसी अफरा तफरी मचाई हुई है वे किसी गरीब नूं रोटी कित्थों मिलनी इथे तां लुटेरा खा सकदा डाकू खा सकदा है गरीब की कोई जान है या तुहाडे वर्गे दे सकदे ने खा सकदे ने जिन्हां ने उस अफरा तफरी का कोई असर नहीं लिया जिहड़े उस अफरा तफरी नूं मिटाउण वास्ते तुले होए ने तुहाडे लोकां दे लंगर चल सकदे ने। पातशाह मैं गरीब उन्हां नूं फुरसत नहीं किसे गरीब वल वेखण दी ते दूजे जिहड़े उन्हां दे सताए होए ने उन्हें नेड़े नहीं लगण दिंदे मैनूं मुसलमान पठान नूं रोटी खाधियां कई चिर हो गया है मंगना मेरी शान दे खिलाफ है। कैसी प्यारी गल है जिसले साखी पढ़ने पठान कहंदा है मंगना पठान की शान के खिलाफ है सिख वास्ते भी एवे पावन बाणी कहंदी है लोक तिकार कहे मंगत जन मांगत मान ना पाया मंगण वाले का कोई मान नहीं तिरकारा तो मिल सकदियां ने मान नहीं मिल सकता इसे करके गुरु का सिख मंग के नहीं खादा करके खादा मान नाल छैंदा तिरकार नाल नहीं खाण नूं तैयार कहंदा जी पठान पुत्रा मंगण जोगा भी नहीं भुखा का मारिया लुटन जोगा भी तो नहीं मेहनत मजदूरी भी कोई नहीं मिलती कई तरह का भुखा का मारिया अज

कबीर साहब कहते ने सब कुछ छड़ दिता है, तनना भी बुनना भी, हुण इक रब दा नाम है लिखिया होया अपने हिरदे ते, किड्डी वड्डी गल है। सब कुछ छड़ के मैं हरी दा नाम, रब दा नाम, हरी दे चरण वसाए हुए हैं।

हम भी ऐसे बगीचे के बूटे बन जाएं जिस बगीचे के बूटों को वासना रहित फल लगता है, निर्वाण पद प्राप्त होता है। ऐसा फल जिसमें नाम रस है, नाम रस के अलावा और कोई भी वासना नहीं, और ऐसे गुरु को नमस्कार करें जो ऐसा माली है, जो इन बूटों को अमृत से सींचता है। देखना, इस बगीचे के बाहर जाकर देखो, आसपास बिखुआ के कुंटा, बाहर ईर्ष्या है, दुविधा है, कपट है, छल है, बाहर तो जहर है। इसीलिए हमें चेतन करते बोले, देखना इसके भीतर आपको अमृत से सींचा जाता है। वो ऐसा अमृत जिसने आपको अमर करना है, जिसने आपको जन्म मरण के चक्कर से बचाना है, आवागौण से बचाना है। और ऐसा है जो गुरु की नजर में फूलता है, उस बूटे को ऐसा फल प्राप्त होता है जिस फल से वो सच प्रकट हो जाता है, जिस सच से ये बोया गया है। ऐसे मालूम होता है गुरुमुख की टेक जो है, नाम है, ओनली नाम। गुरुमुख की टेक ओनली नाम। गुरुमुख परमात्मा के गुणों की सुगंधि बांटता है, ये गुरुमुख का दान है। गुरुमुख परमेश्वर के नाम की कमाई कर, गुरु शब्द की कमाई कर, अपने मन को, अपनी मत को तो लेता है, ये गुरुमुख का स्नान है। पानी से तो सब नहा लेते हैं, लेकिन जो वाणी से नहाता है वो गुरुमुख है। देखना, पानी से हमने अपने तन को, अपने शरीर को स्नान कराना है। ऐसे नहीं कि हमने स्नान नहीं करना, शरीर को पानी के स्नान की जरूरत है, लेकिन पानी का स्नान के अलावा आपको मन को भी वाणी के स्नान की जरूरत है। आप जितनी देर तक वाणी से स्नान नहीं करते, आपका मन अरोग ना होगा। देखना, जे मन अरोग नहीं, जीवन भी अरोग नहीं। जे जीवन अरोग नहीं, ये काया भी, ये तन भी अरोग ना होगा। सिर हम सोच लें कि सिर तन को अरोग रखें, मन ये तंदुरुस्त ना होगा, ते शरीर भी काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा टल। मन क्रोध करता है, मन काम करता है, लोभ करता है, लेकिन भोगना तो शरीर को पड़ता है। भोगता शरीर है, इसलिए गुरुमुख वाणी से स्नान करता है,
प्रभु की वाणी से स्नान करता है, अपने मन को भी अपने मत को भी। गुरसिखी का स्नान बताते हुए भाई गुरदास बोले थे, गुरसिखी दा नामना गुरमत लै दुरमत मल तोवै, गुरु की मत लेकर खोटी मत को तो लेना। पितर शब्द अमृत वचन है गुरबानी के, ज्ञान महारस नाई है भाई, मन तन निर्मल होए। गुरु के ज्ञान के महारस में लिव लगाकर स्नान करना, सुरती जोड़कर स्नान करना, मन तो अरोग होगा लेकिन मन के साथ साथ मन के रिश्तेदार, मन के संबंधी जो ज्ञान इंद्रिय हैं वो भी अरोग हो जाएंगे। देखना जे मन पितर हो गया, देखनी भी पितर होगी, बोलना भी पितर होगा, सुनना भी पितर होगा, सुंघना भी पितर होगा और परसना भी पितर होगा। बिना मन की पितर साथे बेशक पानी से कितना स्नान कर लें, इंसान की आंखें तो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान की देखनी इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान के पांव तो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान की चाल इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान की जबान तो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान की बोली इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान के ए हस्त पाव हाथ तो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान के कर्म इंसान जैसे नहीं रहते। कारण क्या है? पानी से शरीर को तो धो लेता है लेकिन मन को वाणी से नहीं धोता। गुरमुख ने, गुरु के बगीचे के गुरमुख ने, प्रभु के बगीचे ए अमृत की बाड़ी के गुरमुख ने स्नान किया है। ए शरीर सरवर है संतो, स्नान करो लेवला। परमेश्वर से बिरती जोड़कर देखना, ऐसा स्नान किया अब तो उसकी आंखों के सामने सब में परमात्मा की जोत दिखाई देती है, उसकी देखनी कैसी हो गई। अब तो ये बोलता है, तन मन हुए निहाल जहां गुरु देखा सामने। अब तो सुनता है, सुनो सत वाणी। अब तो बोलता है, रसना राम रसायन माती अखु वाहिगुरु। गुरमुख की टेक नाम ओनली नाम अखु वाहिगुरु, ओनली नाम। गुरमुख परमेश्वर के गुणों की सुगंधि बांटता है, यह गुरमुख का दान है। निरपो होए पजय भगवान, साध संगत मिल कीनो दान अखु वाहिगुरु। ऐसा दान करने वाला गुरमुख एक बेनती कर दूं, ये कभी मरता नहीं अखु वाहिगुरु। गुरमुख कभी नहीं मरता। देखना, शरीर जन्मेगा मर जाएगा लेकिन गुरमुख नहीं अखु वाहिगुरु। मेरे साहिब ने बोला, नानक मुए ना आखियां जे गुर कै शब्द समाहे। उन्होंने कदे मरिया होया मत बोलना, गुरमुख को कभी मत बोलना कि गुरमुख मर गया। गुरमुख नहीं मरता, गुरमुख कभी नहीं मरेगा। शरीर मरता है, जो जन्मे सो जानो हुआ, लेकिन ये बोला गोविंद भगत अस्थिर है थिया। जिसने जन्म लिया वो मरेगा लेकिन गुरमुख नहीं।
जो गुरु के शब्द में समा जाए वो मरता नहीं। पितृवाणी में कहा, तिथे काल ना पड़े जिथे गुरु का शब्द अपार। जिथे गुरु का शब्द है उत्थे काल नहीं पो सकता। गुरमुख शरीर नहीं होता, शरीर में रहने वाला होता है। शरीर तो आप भी नहीं, शरीर हम भी नहीं, हम शरीर में रहने वाले हैं। हम तो तब भी थे जब शरीर नहीं था, हम तब भी होंगे जब शरीर ना होगा। गुरमुख शरीर नहीं होता, शरीर आप भी नहीं, शरीर हम भी नहीं। शरीर में रहने वाली रूह जो गुरु के सन्मुख रहती है उसको गुरमुख बोलते हैं। और गुरमुख के स्वरूप को ऐसे बताया गया, जो गुरु के सन्मुख रहता हर बात में गुरु को आगे करता है, अपने जीवन में गुरु की सोच को आगे रखकर जीता है। ऐसे गुरमुख के बारे पितृवाणी में बोले थे। गुरमुख तो यह कहता है, सब कुछ होते हुए भी गुरु के पास जो समरस शक्ति है वो गुरु गुरमुख को दे देता है, लेकिन गुरमुख यह बोलता है, ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो आखो किच हर किया पेओ कबीर कबीर। भगत कबीर जी बोलते हैं गुरमुख के जीवन के लिए, वो तो बोल रहा है ना हम किया ना करेंगे ना हमारा शरीर कुछ कर सकता है। देखो कबीर कबीर अब संसार बोल रहा है, एक कृपा किसकी है जिसका कबीर ने नाम लिया। ये अंदर से मोह ममता मर चुकी है, ये किसने मारी? प्रभु के नाम, जिस प्रभु के नाम की समर्था प्रकट हुई है वो ही करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक मनमुख भी है, कर तो कुछ सकता नहीं लेकिन अपने आप को गिनाता है। वो तो सत्संग में आकर भी आपकी मन की बात मानता है, गुरु की नहीं। वो ये बोलता है हम किया हम करेंगे, आखो भाई हम मूर्ख, आखो भाई गवार, करने वाला बिसरिया दूजे पाए पिया। कर कुछ सकता नहीं लेकिन मनमुख बोलता है कि हमने किया, हमने सत्संग बुलाया, हमने इकट्ठ किया, हमने बोला, मेरे बोलने से ये बात हुई। मनमुख तो ये बोलता है, जो करने वाला है उसको उसने बिसार दिया है। कर कुछ सकता नहीं, पितृवाणी में ऐसा बोला, कहते गुरमुख मुए जीव दे परवान है, मनमुख जन्म मरा है। आखो भाई देखना, आपने एक वृक्ष देखा, वृक्ष में आपने टाणियां देखी, टाणियों में पत्ते, पत्तियों में फूल, आपने फूलों को फल बनता भी देखा होगा। हवा आती है चूलते हैं, पता पता उसका खेड़े में है, फूल खेड़े में है, उसकी टाणियों भी हवा से चूल चूल कर मस्ती में शोर मचाती हैं। लेकिन उसे टाणियों में एक टाणी तोड़ ले, देखो जन्म तो वृक्ष का हुआ, सब टाणियों का हुआ,
लेक टाणी उससे तोड़ लें, उस टाणी को तोड़कर उसको छील भी लें, अब वो टाणी नहीं रहेगी, वो छड़ी बन जाएगी। हम उसको अब टाणी नहीं बोलेंगे, उसको छड़ी बोलेंगे। लेकिन छड़ी तो मुर्दा होती है, छड़ी तो जीवित नहीं होती, छड़ी को तो फूल नहीं आएंगे, छड़ी को फल नहीं लगेगा। छड़ी जीवित नहीं, छड़ी मुर्दा हो चुकी है। वृक्ष से टूटने से छड़ी मुर्दा होगी, वृक्ष से टूट गई उसका जीवन मर गया, वृक्ष से टूट गई अब वो खिड़ेगी नहीं, वृक्ष से टूट गई फूलेगी नहीं फलेगी नहीं। देखना ये जिस वृक्ष से ये टाणी को तोड़ा गया, दूसरी टाणी को देखो जो अभी भी वृक्ष के साथ है, वो जीवित है, उसमें रस है, वो वृक्ष से रस लेती है, धरती से रस लेती है। क्या हो गया जे पतझड़ आ गई, लेकिन बसंत रुत की फिर कामना है। आखो भाई, जो वृक्ष से जुड़ी है फिर बसंत रुत आ सकती है, उसमें खेड़ा आ सकता है। देखना टाणी का जन्म, छड़ी का जन्म हुआ तो धरती से, लेकिन जन्म लेकर जीवन में एक वृक्ष से जुड़ी रही, एक वृक्ष से टूट गई। जो टूट गई वो मुर्दा हो गई, जो उसके साथ जुड़ी रही वो जीवित रही। ऐसे ही मनमुख वो छड़ी है जो परमेश्वर वृक्ष से टूट गए हैं, उनका नाम साकत है, उनको मनुख नहीं बोलते, मनमुख बोलते हैं। वो मुर्दा है, वो जीवित नहीं, वो आत्मिक तौर पर मर गए हैं, जीवित नहीं, वो छड़ी जैसे हैं। पेशा कितना अपने आप को सवार लें, लेकिन जीवित नहीं, आत्मिक तौर पर जीवित नहीं है, वो मुर्दा है, उनको फल नहीं लगेगा। वो किसी को भी अपनी बगल में सुख नहीं दे सकते, जैसे छड़ी किसी को छांव नहीं दे सकती। छड़ी किसी को पीड़ तो सकती है, सुख नहीं। मन में किसी को दुखी तो कर सकते हैं, लेकिन सुख नहीं। शायद इसीलिए हमें बोला, मन मुखा नालो टूटी भली, जिन माया मोह प्यार। लेकिन गुरमुख वो छड़ी है, वो टाणी है, जो परमेश्वर वृक्ष से जुड़े हुए हैं। देखो जन्म तो मनुख का भी, जन्म गुरमुख का भी माता की कुख से हुआ है, जन्म एक जैसा है। लेकिन जन्म पाकर जीवन में एक तो प्रभु वृक्ष से टूट गए, एक परमात्मा की याद में जुड़े रहे। जो जुड़े रहे वो तो फल प्राप्त करते हैं, वो खिलते हैं, सदा विकास में रहते हैं। आप विकास में, दूसरे को भी विकास में रखते हैं। लेकिन जो मनमुख हैं, टूट गए, उन्होंने तो अपना जन्म भी बर्बाद कर लिया, अपना जीवन भी निष्फल कर लिया। ऐसे लगता है वो अपना मरना भी निष्फल कर रहे हैं, मरना भी बर्बाद कर रहे हैं, बर्बादी पर हैं, मरना खराब कर रहे हैं। देखो जीवन तो वो है जो जीवन जीते ही हम जीवन जीते हुए अपने ऐसा जीवन जिए, अपने जन्म को भी सवार लें। संसार वाले कहें इनकी माता तो धन है जिसने जन्म दिया है। जीवन में भी धन धन हो तो अपने जीवन में अपने मरने को आप सवार कर चले जाएं, ताकि जाने के बाद सब प्यार से याद करें।
ऐसा ही बोला। गुरमुख मुए जीवदे परवान है, ओता जूंदे भी परवान ते मरण तो बाद भी परवान, पर मनमुख मानमुख जन्म मरा है आखो वाहिगुरु। मनमुख ने अपना जन्म बर्बाद किया है, कैसे पितरबानी में शब्द से हमें समझाते हैं।

छो जन हुए परवान, कुल उधारे अपना। छो जन हुए परवान। कोई समा था किसी से सुगंधी आ रही थी, सुगंधी सूंघने वाले सुगंधी के नजदीक पहुंचे। वैसे सुगंधी का एक स्वभाव भी है, कैसा है? सुगंधी हमेशा ही फूल के नजदीक ले जाती है। जी अगर नजर फूल ना भी आए तो उसकी याद में समो देती। ये सुगंधी का स्वभाव है। सुगंधी आ रही थी, सुगंधी सूंघने वाले जिधर से सुगंधी आ रही थी उधर पहुंच गए। जिसके पास वो फूल था सुगंधी देने वाला, वो बोला, देखना ये सुगंधी इस फूल की है। देखने वाले ने फूल को देखा, उसके खेड़े को देखा, उसकी पत्तियों को देखा, गुलाबी रंग को देखा, बहुत मस्त हुआ, कैसा सुंदर फूल। समय बीत गया, कई सैकड़े वर्ष बीत गए, लेकिन सुगंधी फिर भी आती रही। सुगंधी को सूंघने वाले फिर उसके पास पहुंचे। पहले तो आपने फूल दिखाया था, अब तो आपके पास फूल नहीं है। फूल तो दिखाई नहीं देता, लेकिन सुगंधी कैसे आ रही है? वो बोला, ये बात तो बिल्कुल सत है, हमारे पास फूल नहीं, ना हम फूल को दिखा सकते हैं। जब हमारे पास फूल ही नहीं, दिखाएं क्या? लेकिन ये सुगंधी उस फूल के अत्र की है। अब फूल नहीं है, हमारे पास अत्र है, ये अत्र की सुगंधी है। ऐसे ही मालूम होता है गुरमुख जीवन में सुगंधी बांटते रहे, आंखों भाई सूंघने वाले सूंघते रहे। जितनी देर तक गुरमुख उनको शरीर मिला, उतनी देर तक उस शरीर में सुगंधी का प्रकाश किया। उनका संग करने वाले वो शुभ गुणों की सुगंधी लेते रहे। जो जीवन में दुर्गंध थी, मनुख के भीतर थी, उस दुर्गंध को मिटाने के लिए गुरमुख का संग क्या है? सच का संग, सत का संग, ऐसे विचारों का संग जो सत में प्रवेश करते हैं। गुरमुख का बोलना भी सच, गुरमुख का गाना भी सच, गुरमुख का सुनना भी सच, गुरमुख का देखना भी सच। ऐसे लगता है गुरमुख के पास सच के अलावा कुछ और होता ही नहीं, सच ही सच। सुगंधी लेते रहे, पर कितने वर्ष बीत चुके, गुरमुख का शरीर तो नजर नहीं आएगा, ना आवेगा, लेकिन सुगंधी तो आज भी लेने वाले लेते हैं। आखो भाई, जीव दया मोया ना बिसरे। आखो भाई, जीते हुए भी सुगंधी देते थे, हम उनको याद करते थे। आखो भाई, ऐसे गुरुमुख सदगुरु का संग करते थे, सदगुरु को अपने जीवन में भी याद करते थे, सदगुरु से गुरु शब्द की सुगंधी लेते थे,
गुरबाणी की सुगंधि लेते थे, गुरुशब्द की विचार की सुगंधि लेते थे, आप देखो शरीर चले भी गए, हम भी वही सतगुरु की, वही शब्द की, वही गुरबाणी की सुगंधि आप भी ले रहे हैं। ऐसे मालूम होता है कि गुरमुख जीते जी भी सुगंधि बांटते हैं, मरने के बाद भी बांटते हैं। गुरमुख जीते जी भी अपने सतगुरु को नहीं भुलाते, मरने के बाद शरीर छोड़ जाते हैं, उनकी याद में बैठने वाले भी उसी ही सतगुरु को याद करते हैं। इसलिए ठीक बोला, गुरमुख मरते ही नहीं, आखो वाहिगुरु, मरेंगे तो हम शरीर मरेंगे, वो कैसे मरेंगे? इसलिए हमें बोला कि देखना गुरमुख की बरसी मत मनाना, आखो वाहिगुरु, गुरमुख की याद मनाना, बरसी तो उसकी मनाएंगे जो मर गया है, शरीर मरा है, गुरमुख तो मरा नहीं, आखो वाहिगुरु, गुरमुख की याद मनाओ, बरसी नहीं। मरत मरता तो है ही नहीं, देखना बंसरी बजती थी, बंसरी बजाने वाले बंसरी बजाते रहे, बहुत बजाई, सुनने वाले बोले बस करो, बहुत हो गया, आपने बंसरी बजा ली, अब तो आराम कर लो, लेकिन बंसरी बजाने वाला रुकता ही नहीं। फिर बोलने वाले बोले आप कुछ खा पी लो, आपको भूख लगी होगी, बाद में बजा लेना, लेकिन बंसरी रुकती नहीं। फिर बोला आप पानी पी लो, प्यास लगी होगी, लेकिन बंसरी बजाने वाला रुकता ही नहीं। ऐसे लगता है अब तो बंसरी बजाने वाले को बजा रही है, बंसरी बजाने वाला बंसरी नहीं बजा रहा। अब ऐसे मालूम होता है कि बंसरी बजाने वाला बंसरी नहीं बजा रहा, बल्कि बंसरी ही बजाने को बजा रही है, बंसरी बजाने वाले को बजा रहा है। देखो बंसरी बजाने वाला हीरो हो गया, वो तो बंसरी का रूप हो गया, अब उसको ना भूख है, ना प्यास है, ना आराम है, बिल्कुल हीरो हो गया। ऐसे ही गुरमुख जो शब्द का अभ्यास करते हैं, नाम वाणी का अभ्यास करते हैं, प्रभु की कीर्ति करते हैं, इतना अभ्यास किया शब्द का, इतना अभ्यास किया शब्द का, अभ्यास करते रहे करते रहे करते रहे, ना उनको ऊंग है ना भूख है, आखो बोला गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग ना भूख है, हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्यापत नहीं, जिथे आत्म राम प्रकाश। ना ऊंग है ना भूख है। मैं एक बेनती करूं, गुरमुख को कभी आलस आता ही नहीं, जे हमें आलस आता है तो समझ लेना अभी हम गुरमुख नहीं बने। आखो भाई, जिसका गुरु ये बोले आपने अमृत वेले को संभालना है, आलस क्या करेगा? गुरमुख आलसी नहीं होता। जे अगर अभी भी हमें आलस है तो हम गुरमुख नहीं, आखो भाई, मनुख हैं, मनुख आलसी होते हैं, आखो भाई, लेकिन गुरमुख नहीं। गुरमुख के जीवन में ना ऊंग है ना भूख, आखो भाई, गुरु शब्द का अभ्यास करते करते ही रहे करते ही रहे, गुरु का शब्द का अभ्यास करते करते ऐसे हुआ, अब तो ऐसे लगता है अभ्यासी अभ्यास नहीं कर रहा, बल्कि गुरु शब्द अभ्यासी को अभ्यास करा रहा है। अभ्यासी कीर्तन नहीं कर रहा, बल्कि कीर्तन अभ्यासी को कीर्तन करा रहा है। आज नाम वाणी की कमाई अभ्यासी नहीं कर रहा, बल्कि नाम वाणी अभ्यासी को अभ्यास करा रही है। आज देखना अभ्यासी तो जीरो हो गया, अभ्यासी कहां गया? अभ्यासी की मैं मर गई, अब तो सिर्फ तू ही रह गया, आखो वाहिगुरु, अभ्यासी की मैं मर गई, अब तो सिर्फ तू रह गया। जब मैं था आप नहीं थे, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, अब तो ऐसा हो गया जब मैं ही मर गई,
जद हमारी मैं मर गई, केवल तू ही रह गया, फिर तू तो मरता नहीं, मरने वाली तो मर गई। आखो वाहिगुरु, मरने वाली तो मर गई, अब कौन मरेगा? कोई भी नहीं मरेगा। अब कौन मरेगा? मरने वाली मर गई। आखो वाहिगुरु, मरने वाली मैं मर गई, जिसकी मैं नहीं मरी वो जीते ही मर गया, जिसकी गुरु शब्द की कमाई से मैं मर गई वो कभी नहीं मरेगा।

ऐसा गुरुमुख का जीवन, जो जीवन मुक्त हो जाता है प्रभु की आज्ञा को मानकर, ऐसा प्रभु का पुजारी जो जीवन में प्रभु के गुणों की सुगंधि लेकर दूसरों को भी ऐसी सुगंधि बांटता हुआ, ऐसा फूल जो किसी के गल का हार बनकर, किसी के मस्तक का श्रृंगार बनकर कुर्बान हो जाता है। फूल होना भी ऐसा चाहिए, सुगंधि बांटता रहे, तोड़ने वाले के भी गल का हार बन जाए, किसी के मस्तक का श्रृंगार बन जाए। गुरुमुख का जीवन ऐसा ही है, मजलूमों का सहारा बन जाता है, दुखियों का सहारा बन जाता है, उनको सुखों की सुगंधि बांटता हुआ अपने आप को तो कुर्बान कर लेता है, लेकिन शरीर के मरने के बाद भी अपनी सुगंधि जो बांटता रहा जीवन में, वो मरने के बाद भी बांटता रहता है। ऐसा परोपकारी जीवन गुरुमुख का है, जैसा भाई गुरदास ने बोला, गुरुमुख परोपकारी बिरला आया। इत्थे ही विचारां दी समाप्ति है। कीर्तन करते हैं, विचार करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, कई प्रकार दियां भुलां हो सकदियां हन, बख्श लैणी बख्श लैणी। दूसरी बार हिंदी विच व्याख्या करते हुए इस तरह एहसास हुंदा है कि कई बार परमेश्वर दी ऐसी कला वरती है, जदों पितर बाणी अपने विच समो लैंदी है फिर याद नहीं रहता क्या बोलना है क्या नहीं। जे उस समय हम उधर चले जाएं कन्वर्सेशन में, तो अंदर से टूटना पड़ता है, टूट कर बात नहीं बनती। टूटने वाला तो टूट जाएगा, दूसरे को भी तोड़ देगा। इसलिए मैं क्षमा की याचना करता हूं। बोलते बोलते नहीं मालूम रहता क्या बोलना है वाहिगुरु, ऐसे लगता है बोलने वाला ही बोलता है, उसकी इच्छा है जैसा बोले। हम बैठ भी जाएं, नित की बानी याद करते हैं, लेकिन जे नहीं बोलना चाहता तो बानी स्टेज पे ही भूल जाते हैं। ये याद कराता है तो कई कई वर्षों की बानी चेते की चेते आ जाती है। ऐसे है, हर आपे बोले आप बुलावे आखो वाहिगुरु। आपके दर्शन करता हूं तो ऐसे लगता है आपे संगत सद बहाल है आखो वाहिगुरु। मैंने आपको नहीं बुलाया, बुलाने वाले ने बुलाया था आखो वाहिगुरु, बैठाने वाले ने बैठा लिया, अब समाप्ति हो रही है आपे विदा करावे, विदाईगी भी आप देगा आखो वाहिगुरु। लेकिन इसकी विदायगी देने का एक बहुत ही बिस्माती रंग है, जब बुलाता है तो अपने आप को बिस्माती रंग में प्रकट करता है, जब आपको भेजता है तो आपके ऊपर बिस्माती रंग प्रकट कर देता है। देखना, बाहर जाने से पहले इस बिस्माती रंग को संभाल लेना आखो वाहिगुरु, ये बहुत काम आएगा। बाहर जाकर जो कुछ और रंग है वो काम नहीं आते आखो वाहिगुरु, वो रंग तो बिंस जाते हैं, मैले हो जाते हैं, उस रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ जाता है। लेकिन ये रंग जे आप ने संभाल लिया ना खोया, फिर जब मिलेंगे आपको सुनने का अवसर परमेश्वर और दे देगा, और मेरे भाग जागेंगे
کیونکہ آپ ایسے سننے والے بن جائیں گے، ایسے سروتے بن جائیں گے کہ سروتے میں بہت شکتی ہے. جے سروتا اچھا مل جائے، وسمادی رنگ والا مل جائے، بکتے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے سب باہر نکال لیتا ہے، اندر نہیں رہنے دیتا. یہ سچائی ہے. جے سروتا وسمادی رنگ میں سنے، بکتا جو مرضی لکونا چاہے اندر نہیں لکو سکتا، وہ پرگٹ ہو جائے گا. سروتے نے اندر سے باہر نکال دینا ہے. میری تو یہ پرارتھنا ہے آپ کو ایسا ہی سروتا بنائے، جب پھر افسر ملے میں آپ کے درشن کروں تو مجھے لگے کہ آپ ایسے سروتے ہیں. اب تو صرف اندر سے جو پرمیشر نے اندر دیا ہے آپ اس کو باہر ہی نکالیں گے نہیں، بلکہ ایک میں ایک ہو جائیں گے. آنکھوں بھائی آپ کے سننے والے تے سنانے والے میں انتر ختم ہو جائے گا. آنکھوں بھائی یہ میری پرارتھنا ہے. آؤ انند صاحب جی کا پاٹھ. رام کلی محلہ تیجا انند، ایک اوہنکار ست

निर्धन को पाले निर्धन को पाले निर्धन को पाले हाय हाय निर्धन को पाले गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाए खालसा रहनी दा नाए खालसा अमली जीवन दा नाए खालसा गुणा दा नाए उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह का आप जी ने चारे वीर बार सरवन किया है केवल बोल के लंघते हैं अज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैन पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लगा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संगत जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लगा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करन वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सात संग आज पंजवां निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ये पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवां निर्धन नू पालन दी सेवा लैण